0: ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म अद्यद्देवता ब्रह्म इत्यार्षं गायत्रं छन्दं परमात्मं स्वरूपं आयुज्यं विनियोगः अ उ अम् ओम ओंकार में तीन अक्षरों के योग है लेकिन उच्चारण करते समय अल्र के वो एक ही एयोंग अयोत भारतीय साया वारा
1: आकाश में ओम ही
0: लं
1: भारतीय
0: सुमता न्यामंगा नानम भारतीय
1: जबन
0: आध्यात्मिक घड़ा दशे जबगा दादा से
1: खा
0: ओंकारश्चाधर कपय भावेरो श्रमण पुरा